0: स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम में, जहां तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं बल्कि किरदार साजी अखलाकी तरबियत के बेहतरीन प्रोग्राम, काबिल और तजरीबाकार असातिज़ा इकराम, जदीद तरीक़ाकार कंप्यूटर और या पुरसकून और महफूज तालीमी माहौल, तलबा व तालिबात के लिए मयारी व महफूज ट्रांसपोर्ट की सहूलत, तालिबात के लिए कॉलेज सेक्शन में अलीहदा क्लासेस का इंतजाम। यहाँ निसाबी तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों, जहनी व जिस्मानी नशोनुमा और अमली तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। महदूद नशिस्तों पर दाखले जारी है। अपने बच्चों के बेहतर तालीम व तरबियत के लिए कल नहीं आज ही तशरीफ लाइए स्काई हॉक इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम, जहां ख्वाबों को मिलती है कामयाबी की परवाज।
1: यौनिम सरो का बाप हो
2: राशा लेका
1: द्रेव सो का बाप राशा लेका दुई तवा चवा
2: नेमवान वर्तम के दो त्री दाने वाच शब
3: या लेका सेद गानी राजा दा कबाब पमुंग बांधी डीर दी लेमु में पे हम न छोड़ कड़े दे
4: ना गुल काका ता सुखरे अमीर आवले गलम मेलमनो ल कबाब पड़म
3: राजा यो कबाब मुंग सरो खरा छ दखले खवंदे वर सर खशी
4: न गुल काका जमा पाल दे मैदा के में जख्म दे और पटी बलीगी हजमा में नाराजी
3: गोरा सेवनी तो परुनी बचे और मैदा दे ब्याह खराब था नुस्खा दरता है हम उस लाड़शा और दो बटाग्राम हर मेडिकल स्टोर या जर्नल स्टोर ना एसेट गो द मैदे सिरप रावाखला द कम इस्तेमाल न बाद चिबदे मैदा दासी चे उस पने बाज मवी
4: गुल काका मैदे उस पने न हजमई होता सिरा तहकारी चिदमेदी डेर खब होतल ले जुका होता था सत्रे कबाब प्राती दी गुल काका दानुम और रंगे रात ब्याह हुआ या चि सुख बदल सिरप प्राने की
3: नुमिये एसेट गोदे शिन रंग के पे मैदा जोड़ा था और द बटाग्राम हर ख मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर के खप आसानिया सरा में लावेगी दानुम ये उलिका एसेट गो चेहर डरना निशी
4: गुल काका दस पे लेंग रात हूँ हुआ चिवी लिकम
3: जदर तवायम तई लिका ए सी आई डी जी ओ एस एड गो एस एड गो एस एड गो
5: कचरिस्ता सुखलेला त्रवी त्रवी उबराजी दरूटे नपस मु प मैदा भूजवी बार बार अडरकी कवे मैदा के मु जखम या तेजाबियत वी नुहुम उस जानला दमनली शिवी कंपने दमेदी सिरप एसेट गोरा वाखले कुमची द जिला बटाग्राम हर ख मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर की प आसान त्यासरा मिलावेगी। मेन डिस्ट्रीब्यूटर दे मोहसिन शाह ट्रेडर्स जेल मोड़ बटाग्राम दराबितीश मेरादा 0311 158 7745 बल नंबर

0: वही
1: लक गुल पसांग तीर्षे खुच खौरे पचावड़ी लक गुल पसांग तीर्षे खुच खौरे पचावड़ी दखव गो यारानु हिर्षे खुच खौरे

जैन मेडिकल स्टोर बटग्राम ननिया मोड़ के बताओ तो मिलावेगी। दातखान जनरल स्टोर जबा रहीमाबाद के बाद मिलावेगी। सरदरिया सरखवा के दबांडी स्कूल सरा बिलाल अहमद जनरल स्टोर से रह के बाद मिलावेगी। ताउस्तान जरूर वाख ले पैदा मिलाओशी।

दिल में आया था वो बहुत से रास्तों से। दिल में आया था वो बहुत से रास्तों से, जब जाने का रास्ता न मिला तो दिल तोड़ गया। दिल में आया था वो बहुत, दिल में आया था वो बहुत से रास्तों से, जब जाने का रास्ता न मिला तो दिल ही तोड़ गया।

क्या लिखूं जिंदगी के बारे में। वो लोग ही बिछड़ गए जो जिंदगी हुआ करते थे। बहुत मुश्किल से सीखा है खुश रहना उसके बगैर। अब सुना है ये बात भी उसने।

0: पहले से दी।
1: ये है कमर चाय का पाकिस्तान।
2: दा चल कप समा दे और कप अगर दे वो हल ये कमर दे। कमर चाय दो पाकिस्तान नंबर वन चाय, रंग भी मिसाला खंद ला जवाबा। कमर चाय दो पाकिस्तान मशहूर चाय दा कुमच द पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान पहर कोर और पहर होटल के इस्तेमाली की।
3: नेमनी दो सौ अजल वर्तमान हम द कमर चाय वही दी हो पलाला बई मनी सो दे लालची और द बाजार न बई द कमर चाय पजे नूर बेखंद चेहरा पा महकड़ी हुई
0: दाजल ब कमर चेहरा ओडम खुदा बरा त चरता मिलाउशी
2: दा बताता पो बटाग्राम कुजबांडा मेरा बांडीगो चतर प्लेन ताकोट कर्ग और बना बाजारों ने लावा दो बटाग्राम और अलाई पहर गट और उड़ू की जनरल स्टोर के मिलावेगी। पो बटाग्राम की द पीएसओ पंप सर निजदी द सलीम एंड ब्रदर्स दुकान नहम अखस्तले शई द कमर चाय पाड़ा नूर मालूमात पदी नंबर तरला सकवले शई 0320-9000-920 बल नंबर दे 0314-92-490-83।
4: जहाँ मीठी बोलियाँ बोली जाए
1: वहीं बनता है कमर चाय का खूबसूरत पाकिस्तान। कमर चाय
5: बटाग्राम हलको दफारा दो खुशहाली जेरे उस तासुला बल जाए तलु जरूरत निष्ठा स्तासु पर अखपल हार बटाग्राम के देर मियारी और द जरूरत टूल सीजन में लावे दलेशी लक दाल चावल हर किस्मा मसाले लक हाफिज काबली पुलाव हाफिज सालन मसाला और हाफिज बिरयानी मसाला और द कमाल खबर पके दादा चले यौ किलो मसाले सरा जोड़े भी फ्री कोल्ड ड्रिंक्स और हर किस्म जूस वर्ष हम मिलावेगी दमाशुमानु दपारा द हर एक अपने वारा और स्टैंड एंड पेम्पर हम मिलावेगी लकराहत स्नाइपीस और रूम पर नुबिया हम नन तशरीफ रोड़े रियास करियाना एंड जनरल स्टोर बटाग्राम था और तरला सकई द कोर टोल राशन हम पर होल सेल और हम पर परचून और पता याद साथ रियास करियाना एंड जनरल स्टोर यूनाइटेड मार्केट बटाग्राम दनूर मालूमात दपारा पदे नंबर राब्ता होके असद हान 0347-61-064-17 मोहम्मद रियाज 0300-56-32-017 और पीटीसेल नंबर हम याद साथे 0997-310-490 रियाज करियाना स्टोर द इत्तेमाद और द क्वालिटी
6: क्या आप अपने बच्चे के रोशन महफूज और कामयाब मुस्तकबिल के लिए बटाग्राम में किसी मियारी तालीमी इदारे की तलाश में हैं तो फिर आइए स्काईहॉक इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज बटाग्राम में जहां तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं बल्कि किरदार साजी अखलाकी तरबियत एतिमाद और क़ियादत की तामीर भी हमारी अव्वलीन तरजीह है। नर्सरी से लेकर FSC तक मियारी इंग्लिश मीडियम तालीम प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स के बेहतरीन प्रोग्राम काबिल और तजरीबाकार असातिज़ाए कराम जदीद तदरीसी तरीके कार कंप्यूटर और साइंस की जदीद लेबोरेटरियां पुरसकून और महफूज तालीमी माहौल तलबा व तालिबात के लिए मियारी व महफूज ट्रांसपोर्ट की सहूलत तालिबात के लिए कॉलेज सेक्शन में अलीहदा क्लासेस का इंतजाम यहाँ निसाबी तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों जहनी व जिस्मानी नशोनमा और अमली तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। महदूद नशिस्तों पर दाखले जारी है। अपने बच्चों के बेहतर तालीम तरबियत के लिए कल नहीं आज ही तशरीफ लाइए स्काईहॉक इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज बटाग्राम जहां ख्वाबों को मिलती है कामयाबी की परवाज।
7: ग्रानो औरिदुन को तसो आवाज और रेडियो अमन 88.4 बटाग्राम।

कि जो हमारे पास बी है, एज एम आर वाज वर है, हम उस पे क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम सिंपल फॉर्म भी यूज करते हैं वर्ब का और हम इसके साथ आई एन जी लगाते हैं. ओके और जब हम हैव एंड हैज हैड इस्तेमाल करते हैं तो हम इसके साथ क्या करते हैं कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. याद रखिएगा इस बात को, हम जब भी हैड का और हैज का इस्तेमाल करते हैं, हैव का इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसके साथ क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. और जब हम डू अब हम नेगेटिव फॉर्म के साथ इस्तेमाल करते हैं, याद रखिए इस बात को, जब भी हम डू डिड और इसकी हम बात करते हैं तो हम ये किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, आसान शब्दों में हम सिर्फ और सिर्फ हम नेगेटिवली या हम क्वेश्चन के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं. तो आज जो हमारा टॉपिक है हम उसकी तरफ आखिरकार बढ़ ही गए और वो है डू. तो चलिए शुरू करते हैं. जो हमारे पास डू है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में और इंटरोगेटिव मतलब इंटरोगेटिव में इस्तेमाल करते हैं. किस तरह, मैं आप लोगों को पहले समझाता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो याद रखिएगा, ये जो हमारे पास डू है, डज है, डिड है, सिंपल प्रेजेंट और पास्ट सिंपल में ऑर्डिनरी वर्ब नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसका मतलब ये है, जो हमारे पास डू है हम इसको सिंपल यानी जो हमारे पास बिल्कुल सिंपल आता है, जो हमारे पास वो सिंपल जो सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है जिसमें हम बात करते हैं, हम जनरली बात कर रहे हैं, हम वो क्या कहते हैं कि हम ये बात नहीं कर रहे कि काम हुआ है काम होगा, बल्कि हम सिंपली बात कर रहे हैं कि वो क्या कहते हैं यार, ही रीड वो पढ़ रहा है, ही स्पीक वो बोल रहा है. तो मतलब इस तरह के हम जो मेरी जब बात करें हम किसी चीज को स्पेसिफाई नहीं कर रहे, हम अभी की बात नहीं कर रहे, हम पास की बात नहीं कर रहे. तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ये बात आता है कि हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं कि हम क्या डू डज इस्तेमाल करते हैं हम प्रेजेंट में और डिड का इस्तेमाल हम पास में करेंगे. सही है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव में हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव में यानी फेली हाल जारी मनफी में, फेली हाल जारी मनफी में हम किस तरह यूज करेंगे. तो चलिए इस पे बात करते हैं. ही वर्क्स वो काम करता है. आप लोगों ने सबसे पहले इस बात को जहन नशीन करना है, जो हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब डू डज एंड डिड है, डू एंड डज हम सिंपल प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं और डिड जो है हम पास में इस्तेमाल करेंगे. हम ये सिर्फ नेगेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं और साथ साथ में वो क्या कहते हैं कि हम किसी चीज को एम्फिसाइज कर रहे हैं, हम उसको थोड़ा सा जोर डालते हैं उस पर, तो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं. और एक बात और भी है कि हम प्रेजेंट में, हम प्रेजेंट सिंपल में बात कर रहे हैं जब, और जब हम पास सिंपल की बात करें तो हम उस वहां पे क्या डेड का इस्तेमाल करेंगे. मिसालों के साथ वाजह करता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैं असल में कह क्या रहा हूं और ये जो मैं बोलने लगा इसका क्या मतलब है. तो चलिए सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव टेंस इसका एक मिसाल देता हूं. ही वर्क्स वो काम करता है. ही वर्क्स वो काम करते हैं मतलब मिजाज कम जमन गद नन खबर होने के मुताबिक का मौजूद है गमन गद हागा वो खबर का उच या गमन सरा प्रेजेंट यानी तो उस खबर मंगा का या यो खबर अब तिरफ्यू दरिया खबर मंगा उन्हें आगे की पके मंगा दो किस्मा अगजरी वो भी इस्तेमाल हो मंगा डू डज तो कम दिया मंगा पर प्रेजेंट के इस्तेमाल हो यानी उस खबर की गई और वैसे कम दे पास यानी यो कार से धागे दे पास कल मंगा नेगेटिव इस्तेमाल हो या मंगा इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव कम तचे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन द या बस कम दे द नफी द नहीं लपार जमंग इस्तेमाल हो नागे दपार मंगा द डू और डज और डिड इस्तेमाल हो. ओके दीजिए नमक की तपीजू टाइम नहीं इसका नमक सरा वाले नहीं मिसाल ले प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव यानी कम चमंग सरा उस मौजूदा वक्त दे कि पकी वक्त नमंगा सवाल को आया वो काम करता है आए वो काम करता है. तो चलिए इसका नेगेटिव बनाते हैं. ही डजंट वर्क वो काम नहीं करता. हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है ही वर्क्स वो काम करता है, हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हम क्या कहें हम क्या करेंगे यहां पर कि हम कहेंगे ही डजंट वर्क. एक बात और भी याद रखिएगा, जो हमारे पास वर्ब है

हमारे हमारे पास जब सिंगुलर आता है ही शीट या सिंगुलर नाउन आता है तो हम वर्ब के जो हमारे पास वर्ब है उसके साथ हम क्या करते हैं, हम ऐसे आइस का इजाफा करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं जो हमारे पास जो वर्ब है वो बेसिकली प्लूरल है। जब हम इसका सिंगुलर बनाते तो हम इसके साथ एस या इस इजाफा करते हैं। एस हम कब लगाते हैं, इस कब लगाते हैं, हम एक्स सी सी एच और ओ एच डबल एस हम इस तरह, फिर हम इस पे डिटेल के साथ बात करेंगे इंशाल्लाह जब हम टेंस की बात करेंगे। सही है, तो याद रखिएगा सबसे पहले हम किसकी बात करें, हम प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं। हम एक सादा जुमला लेते हैं ही वर्क्स, वो काम करता है, हम इसका नेगेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैंने आप लोगों को कहा है ही शीट सिंगुलर नाउन के साथ हम डज लगाएंगे, और यहाँ पर हम नेगेटिव की बात करें तो हम डजंट, हम क्या करेंगे डजंट इस्तेमाल करेंगे, ही डजंट वर्क। हम क्या कहें, हम क्या क्या करेंगे यहाँ पर, किस तरह जुमला बनाएंगे, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वो, फिर उसके बाद हमारे पास वो आएगा, तो हम कहेंगे ही डजंट वर्क, वो काम नहीं करता। क्वेश्चन, फिर से हम इससे क्वेश्चन बनाते हैं, तो हम इससे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, हम जो हमारे पास वो क्या कहते हैं, जो हमारे पास वर्ब है हम सबसे पहले इसको वो क्या कहते हैं कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हम उसको सबसे पहले लाएंगे। किस तरह लाएंगे, एक बात और भी याद रखिएगा, जो हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस है नेगेटिव के अलावा हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम फिर सेंस ही नहीं बनेगा, ये ग्रामर क्रेजी है यार, मुझे पता है आप लोग समझ नहीं गए, लेकिन मैं अपना कोशिश कर रहा हूं। तो याद रखिएगा इस बात को आप लोगों ने ध्यान नशीन करना है कि हम प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट के साथ हम किसी चीज का हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। हम करते हैं तब करते हैं जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो चलिए इसका हम क्वेश्चन बनाते हैं, तो किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को लाना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डज को लाएंगे, डज, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट को लाएंगे, यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा सब्जेक्ट, हाँ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो फिर उसके बाद वर्ब आएगा। तो हम क्या हम किस तरह बनाएंगे इस जुमले का, हम इस तरह बनाएंगे, डज ही वर्क, क्या वो काम करता है, डज ही वर्क, क्या वो काम करता है, नोट ऑल नाउ ने खबर राजन सदा बजेन की याद साथ ही कल चिमंगा द प्रेजेंट खबर रखाओ, यानी दहागा टेंस खबर रखाओ, दहागा जमाने खबर रखाओ, चिकम मौजूद है पागी के मंगा से किस्मा मददगार फाल न लगो मंग लगो कला आग वक्त के लगा हुआ सिखला मंगद हागे मनफी जुड़ा हुआ या मंगा, यानी या मंगा सवाल ये जुमला जुड़ो या मंगा मनफी जुड़ो चाया ना या मंगा ना या वाले वाई मतलब तस्त का वाई खबर अदा करना चाहिए वाली सिंपल पास नेगेटिव सेंटेंस मंग संगा जोड़ो हुआ सिंपल पास नेगेटिव सेंटेंस मंग सर उसले सपोज मंग सर यो जुमला दा न मंग दा वायु ही वर्क उसने काम किया ही वर्कड उसने काम किया ही वर्कड उसने काम किया। चलिए इसका हम नेगेटिव बनाते हैं, किस तरह बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लाना होगा, हम क्या करना होगा, हमें सभी को लाना होगा सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब को लाना होगा, सब सब्जेक्ट हम क्या लाएंगे ही। तो हम मैंने आप लोगों को कहा था कि जब हम सिंपल की बात करें तो हमारे पास कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, डिडंट आएगा, हमारे पास डिड आएगा। तो हम नेगेटिव की बात करें तो हमारे पास डिडंट आएगा, इनके बाद एपोस्ट्रोफी हमारे पास टी आएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे डिडंट। तो किस तरह बनेगा जुमला, ही डिडंट वर्क उसने काम नहीं किया, ही डिडंट वर्क उसने काम नहीं किया। हम इसका क्वेश्चन बनाते हैं तो हम किस तरह बनाएंगे, चलिए क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो हम इस तरह इसका क्वेश्चन बनाएंगे डिड। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हमें उसको पहले लाना होगा, फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट लाना होगा, सभी के बाद हमें वर्ब को लाना होगा। तो हम कहेंगे सबसे पहले हम किसको लाएंगे, अपॉलॉजी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब सिंपल टेंस में हमारे पास, सिंपल पास्ट टेंस में हमारे पास कौन से इस्तेमाल होता है, डिड इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हमें डिड लाना होगा, डिड हम लिखेंगे, फिर उसके बाद हम हमारे पास सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड, और डिड के बाद हमारे पास सब्जेक्ट डिड, फिर उसके बाद हमारे पास वर्ब आएगा डिड ही वर्क, क्या उसने काम किया, क्या उसने काम किया, डिड ही वर्क, क्या उसने

काम किया। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा और मैं आप लोगों को वाजह करता हूँ। याद रखिएगा इस बात को, इस टेबल को आप लोगों ने याद रखना है, जो हमारे पास ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी वर्ब डू है, इसको हम तब यूज करते हैं, हम प्रेजेंट में यूज करते हैं आई यू वी दे के साथ, हम डू इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट में। इस टेबल को याद रख रहे आप लोगों ने, हम ऑक्सिलरी डू कब यूज करते हैं, हम यूज करते हैं आई यू वी दे के साथ और प्रेजेंट में। अच्छा, हम डज ऑक्सिलरी वर्ब कब यूज करते हैं, हम डज ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं ही शी इट प्रेजेंट में। हम डू ऑक्सिलरी वर्ब, हम डज ऑक्सिलरी वर्ब ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज करेंगे कब, प्रेजेंट में। अच्छा, हमारे पास जो डिड है, याद रखिएगा डिड हमारे पास जो ऑक्सिलरी डिड है, ऑक्सिलरी वर्ब डिड है, हम तमाम शब्द के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं पास्ट में, लेकिन इसको हम कब यूज करते हैं पास्ट में। आप लोगों ने जो हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब डू डज एंड डिड है, डू को हम इस्तेमाल करते हैं आई वी यू दे के साथ प्रेजेंट में, डज को हम इस्तेमाल करते हैं ही शी इट प्रेजेंट में, और डिड को हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट यानी तमाम से के साथ हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट में। इस बात को आप लोगों ने लेने में बचा, चलो यानी मंगसरा से कम ऑक्सिलरी वर्ब डू दे हमंगे इस्तेमाल हो या उमंगा आई यानी ज, आई यानी ज, यू त वी मंगा दे हुई, मतलब मैं दादे कल च मंगा द ऑक्सिलरी वर्ब डू इस्तेमाल हो ना गौ मंगा प्रेजेंट की द आई यानी जान द पारे इस्तेमाल हो, यू यानी हुई द पारे भी इस्तेमाल हो, वी यानी मंगा द पारे भी इस्तेमाल हो, दे यानी हुई द पारे भी इस्तेमाल होगी, दामंग कल से दामंग प्रेजेंट के इस्तेमाल हो। बैच कम मंग सारा डज दे दामंग सारा से ऑक्सिलरी डज कम दे दामंग इस्तेमाल हुआ ही यानी हगा, शी यानी हगा जिन्हें, इट यानी हगा प्रेजेंट के इस्तेमाल हो। डेट चिका मंग सरा ऑक्सिलरी वर्ब डेट दे हगमंग इस्तेमाल हो पर टोल सब्जेक्ट सरा यानी अगमंग ही सरों में इस्तेमाल हो, शी सरों में इस्तेमाल हो, अगमंग दे सरों में इस्तेमाल हो, अगमंग वी सरों में इस्तेमाल हो, अगमंग यानी मंग ही शी इट यू दे प्लूरल सिंगुलर हर यो सरा मंगा डेट इस्तेमाल ला मंगा पर किस के इस्तेमाल ला मंगा पर पास्ट टेंस के पर पास्ट सिंपल टेंस के। मिसाल न बदल को मटा मंग सरा कमेगी नो तासुप मो यकीन हो हिलन हो हिलन मता सुबदी बांदीबा डिटेल सर पोशी जर से नन चे कम दे दू खबर दा जर से खत्म हुआ। हाँ, मैं आप लोग को और मिसालें देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में हम किसका इस्तेमाल करेंगे डू डज की जरूरत नहीं होती। याद रखिएगा इस बात को, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास किसी भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बात को आप लोग ज़हन में करना है, आई वर्कड, आई वर्क्स एंड दे वर्क्स, इस बात को आप लोगों ने ज़हन में बिठाना है। हमारे पास फिर डू इस्तेमाल होता है किसके लिए, रिपीटिशन को हम अवॉइड करते हैं, यानी हम जब बात करें हम डू यू नो हिम तो हम कहेंगे कि यस आई नो हिम, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इस सवाल को हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड की बजाय हम इसको सिंपल बनाते हैं, तो हम कहेंगे डू यू नो हिम तो हम कहेंगे यस आई डू, हाँ मैं उसे जानता हूँ। डू यू नो हिम क्या तुम उसे जानते हो, यस आई डू मैं उसे जानता हूँ। तो यानी हम क्या करते हैं, हम रिपीटिशन को अवॉइड, जिस तरह जो हमारे पास प्रोनाउन काम करते हैं, हम कहते हैं कि ही वाज एब्सेंट बिकॉज ही वाज इल, वो नहीं आया था इसलिए नहीं आया था क्योंकि वो बीमार था, तो हम यहाँ पर रिपीटिशन को अवॉइड करते, तो यहाँ हम क्या कहेंगे ही वाज एब्सेंट बिकॉज ही वाज इल, वो नहीं आया था इसलिए नहीं आया था क्योंकि वो बीमार था। अच्छा आगे बढ़ते हैं, मिसाल मैं आप लोगों को और देता हूँ, शी सिंग्स वेल, वो गाना वो अच्छा गाती है, तो यहाँ पर हम मतलब कोई सवाल पूछ रहे हैं क्या वो अच्छा गाती है, शी सिंग्स वेल क्या वो अच्छा गाती है, तो हम यहाँ पर कहेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि यस शी सिंग्स वेल, हम कहेंगे यस शी डज, हाँ वो अच्छा गाती है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारे पास आता है डज तो उसका हम भी इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारे पास डिडंट आता है इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिए इस बात को, आसान शब्दों में हमारे पास जो डू है, डज है, डिड है, हम सिंपल में यूज करते हैं लेकिन हम नेगेटिव में यूज करते हैं, और जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम इसलिए यूज करते ताकि हम रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं, और डू हम इस्तेमाल करते हैं एम्फेसाइज के लिए, यानी किसी बात को हम जोर देते हैं, किसी बात को जब हम किसी बंदे को किसी चीज को

भी पास्ट पार्टिसिपल आएगा यानी पास्ट आएगा नहीं, हमारे पास जो वर्ब है वो फर्स्ट यानी वर्ब का बेस फॉर्म हमारे पास आएगा। तो मैं एक जुमला बनाता हूँ, आई डिडंट लाइक पिज्जा, मैं पिज्जा पसंद नहीं करता, डज ही लाइक पिज्जा, क्या वो पिज्जा पसंद करता है। तो हमारे पास जो डू था इसका भी मुकम्मल खत्म, और हैव हैज एंड हैवंट हम कहाँ पे यूज करते हैं, याद रखिये इस बात को, हम हैव को हम हैव हैज एंड हैड को इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, और हम पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। ये जो हेड हमारे पास है हम सिर्फ और सिर्फ उसमें हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं। ओके जी, तो चलिए इस प्रोग्राम को यहीं पर इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में हम बात करेंगे जो हमारे पास मॉडल वर्ब आते हैं। मॉडल वर्ब अब लोग कहेंगे कि वो क्या है, वो हमारे पास शुड है, कुड है, माइट है, माइट यानी इसी सारी चीज को मॉडल वर्ब कहते हैं। हम उस पर नेक्स्ट शो में बात करेंगे, तो अब मुझे इजाजत दीजिएगा। چرته همې خاط اوال بجای د اوسېږي نن څوک چې کوم زمونږه خپلون ډول کې موجود ده هغه موږ سره د ماډل ورب نو هغې باندې به خبره کوو اګزلې ورب نن کمپلیټ الله په حکم سره ختم شي بل لږ چانده کې بیا ټچ ورکوم صرف او صرف او که تاسو څه کوېستن وغې نو هغه رانه وکړي دروازه به درنه زموږ چرته همې خاط اوال بجای د اوسېږي لاړو درنه دلیو الله پامان رب رکا

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटाग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा। रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज़्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।
1: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।

जी डॉक्टर से भी हो कल अगले दे। सलाम वालेकुम। ऐसे तंगोल कभी जी डॉक्टर से भी हो बल मरीज पुख्ता।

120 80 दा नॉर्मल ले दिन छे बरशी 130 और 140 150 ब्याच कम देनो लान दे 100 110 नो दा पा हाई की राजी हाइपर टेंशन उस गुरु चिदा हाई वाले राजी और लो वाले राजी मंग का नजर वाचू पदे हालात बांधे नो देर ज्याद गंभीर हालात तीन सभा ग्रानी दा और गमु नदी सूचू नदी पिकरू नदी नुदा सर तरह से दिल खुदा अल्लाह कर दे और इंसान चिकम दे नो आगा कमुंगा हुई तो गुरु नो दा हिरसनाथ ते बल जमंगा प इंसानानो के डीर ज्यात गलते हैं प्रति दी कनन सबा मंगा हर कोर बांध नजर वाचू नु प हर कोर के तकरीबन टेंशन डिप्रेशन गम जड़ा एंजाइटी बनियतो जलनपन दा टोल शिरागुंडे की दा टोल जहर दी दा दा हर चा प दिमागों की यो बकस ते चेहरे की संभाल कड़ी दियो दा टोल बनियते माचुसुमनु मनो आगिश्तल दे पकिताल कड़ी दी और इस्तेमाली ये वक्त सरा सरा कले चिदा राशि ददीना जंग जगड़े न प्रतुना दा टोल तेरा वलाड़ीगी कमंगो गुरु दो हकीकत पस्तर गयो इंसान था न पमखकारा हो बिल्कुल अलग का दलरगी पशान सपाह कारी खुदन न पागबान दे लक सिंग चिलरगी बाने चिंजे लगी पदक इंसान बांधे द दगे हसद बोगोज अगर चिंजे पागल लगी दिली दाग पा दिमाग अगर खुरी मंकी द योबल खातिर निश्ता कशर खबर कई नुमशर ओ रख ली कमशर खबर कई कशर ओ रख ली मंग हर वाखते तिले चिकम दे नो डबे मिलास की नहीं बोले दो बस अरगंड की गु ओ रख लू द दगे न बर्दाश्त किए दो पवज चिकम दे नो मंग ता मुख्तलिप मुख्तलिप जंग जगड़े पसादुना न प्रतुना दम ता वलाड़ी और जमंग लास राचा पेर कई हो मंग न पुईगु पहाकीकत के मंग न पुईगु ऐसे खो मुंगल खान रा कई चिब्रे तव का चिमा हो पोख्तो ओकड़ा पोख्तो दे तो नई पोख्तो हो चिकम दे नो खातिरदार है तो वही मिलमा दोस्त हुई दे तो पोख्तो हुई पकोर के गैरत कोल और अगा कम जंग जगड़े ची पसाद तेनो दग इंसान कमजोर दे वाले दे दिमाग कमजोर दे दिमाग कार न कई कले ची रोर वाली क्या नु उगा बख्कत ओड़े जान बड़न दे जान बकाने अल वस्तार रोर वाली प्लार वाली मोर वाली दब कामयाबी की और कनता हसे दिस्तर की श्री कड़ी नोमदक कस्तर की बची कम दिस्ता श्री की गी दर्दी की बा और इस पैदा बनी ददक इन मरजून रावलाड़ी की लका संगचे ब्लड प्रेशर दे इंसान खोप तनुप्री दी टेंशन की मुफ्तलाशी तस शुगर टेंशन नरा पैदा की गी ख्वागो पसे मजे तवे जमा ख्वागो खुरल ख्वागो इसने मंगना ज्याद ख्वागो सोक नुखरी खो टेंशन खपगान डिप्रेशन गम आ गम चिताल दा दिमाग बिल्कुल दा सिकी ची सोजई दग गम दे दगे नबिया ची कम देनो मुख्तलिप मरजुना रापिदा की चाहे कि यो ब्लड प्रेशर दे यरा एंजाइटी दुम रहत्ता यो इंसान यो जालिम या

0: रकीब खटाक याद मल्क सीएनजी जली चौक खरकना सलामुन नजीर अहमद खादिम से वेलकम टू दी शो। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खीरियत से होंगे और आप खुश होंगे। सलाम टू ऑल टीम तेरा मदद डेरा मनना सलाम ना भाई कैसे हो भाई। बचपन से लेकर अभी तक मेरी जिंदगी में इतनी मसले के वो हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। भाई थक गई हूँ इस जिंदगी से, मेरे नसीब में खुशी नहीं है। मैं अंशा प्राम खरक डेरा मदन खुशहाल हूँ से। अस्सलाम वालेकुम निजाम भाई तासु सिंह है खे प्रोग्राम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बाई योर प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर। आई एम अनीसा भटग्राम डेरा मनन अनीसा खुशहाल से मैसेज अस्सलाम वालेकुम सिफात कॉस्मेटिक्स।
1: वालेकुम सलाम।

0: पूरी वला चशमा
1: यजमा दहाल हाल तपो सुनकड़ी रंग बमी गुरी औ पला दर तवाई हवाई हलुना
0: एक करता मूर कमोर जे वलाड़ी अमा उठी उठी दिली वनो वही ली वनो पहचान राजीना
1: यक लिखी सख्ता औ सख्त खामोशीदा यलाले में मर दे खलक मा औ मान खबर बिना
0: या भाई दादा वही दादा बिचाई कुरुण छिपमा पमाई रविना
1: दमाजीगर माजीगर ची सिंग तीर्षु दासिब तीर्षी औस्ता औस्ता ले बने मीना
0: पुतुरु खारु कखारु मखपट कनो दी दुनिया की बिलंगे तपे खुदमा
1: यस्ता